एफएम गोल्ड पर शुरू हो गया है दिल का मेल बॉक्स और मैं हूं आपके साथ नीतू। आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देती हूं कि दिल का मेल बॉक्स वो प्रोग्राम है जिसमें आपकी पसंद के गीतों की रिक्वेस्ट ली जाती है और उन्हें पूरी करने की कोशिश की जाती है। अपनी रिक्वेस्ट जो आप भेजते हैं तो उसके लिए मेल आईडी नोट कर लीजिए, fmgoldairdelhi@gmail.com fmgoldairdelhi@gmail.com पर आप अपनी पसंद के गीतों की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। समय हुआ हमारे पास वो गीत भी मिल जाएगा तो आपकी पसंद पूरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिलहाल जिनकी पसंद पूरी हो रही है वो हैं महेश अग्रवाल और मीना अग्रवाल, जिन्होंने रजनीगंधा फिल्म का ये खूबसूरत सा गाना सुनना चाहा है।

0: मन दा।
1: बिल्कुल, मन ऐसा ही है, कभी भी कुछ भी चाह सकता है, कुछ भी पाने की इच्छा कर सकता है, लेकिन इच्छाओं का क्या है, वो तो ढेरों हैं, अनगिनत हैं, और उनका पूरा होना ना होना हमारे हाथ में नहीं है। बस हम कुछ जो उनकी तरफ बढ़ने वाले कदम है वो कदम बढ़ा सकते हैं, अपनी तरफ से एक्शन ले सकते हैं, यही हमारे हाथ में है। जैसे आपके हाथ में है मोबाइल फोन और आपको लिखना है मैसेज और अपनी पसंद का गीत और हमें भेज देना है fmgoldairdelhi@gmail.com पर। अभी मैं आपको एक और गीत सुनवा रही हूं, जो कि एक ब्रेक ले रही हूं मैं, हमारी आकाशवाणी का गीत है। ये गाना सुनिए और फिर लौट कर आते हैं।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू के साथ हैं आप और ये है दिल का मेल बॉक्स, जिसमें ये गाना आप सुन रहे हैं गुमराह फिल्म से और इसकी फरमाइश की है शम्सुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, अनु खान ने।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

वन ऑफ द बेस्ट लोरी इन हिंदी फिल्म म्यूजिक. अगर आपने फिल्म म्यूजिक में लोरी ढूंढने जाएंगे, एक तो है ही बहुत गिनी चुनी, और उनमें से एक ये जो है ना, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है. और ये जो लोरी आजकल तो बनती नहीं है फिल्मों में, अगर आप देखें तो लोरी मैंने तो बहुत जमानों से नहीं सुनी. कौन सी फिल्म में आई है अगर आपको पता हो तो बताइए, मैं भी सुन लूंगी. लेकिन पुरानी फिल्मों में हाँ लोरियां होती थी, कुछ ना कुछ एक ऐसा होता था जो बच्चों के नाम होता था, पर अब ऐसा जरा कम होने लगा है. खैर, ये जो गाना यानी ये जो लोरी आपने सुनी गीता दत्त की आवाज में, सुजाता फिल्म से थी, और जिन पर ये पिक्चराइज है यानी सुलोचना लाटकर, आज उनकी पुण्यतिथि है, और इसीलिए इसको सुनना चाहा था मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान ने. और अब पढ़ते हैं अगले गाने की तरफ.

ये ना रस्में हुआ करती थी एक जमाने में जो कि धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं, लेकिन इस तरह के गानों में हम उन रस्मों को याद कर सकते हैं। शैलेंद्र साहब ने लिखा था ये गीत, और इस तरह की रस्में जब हैं हमें गीतों में सुनते हैं तो एटलीस्ट याद तो रहता है कि सावन में कभी ऐसा होता था कि भाई जाता था बहन को लेने के लिए उसकी ससुराल से, और फिर तीज मनाई जाती थी घर में आकर। खैर अभी उसमें वक्त है, फिलहाल अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि इन सब चीजों पे बोलना शुरू होंगे तो फिर वो बातें खत्म ही नहीं होंगी। अगला गाना जो सुनना चाहा है मनोहर लाल गांधी ने सुनना चाहा है मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म से।

और अब वक्त हो गया है इस प्रोग्राम के आखिरी गीत का, जिसे सुनना चाहा है भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण संस्कृति और पौरुष ने। फिल्म है फिर कब मिलोगी। आप इस गाने को एंजॉय कीजिए और नीतू को इजाजत दीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ तस्वीर में 11:10 पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज कल भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वे इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं को तलाशना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमरीका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। अमरीकी संसद की विदेश मामलों की समिति के समक्ष सुनवाई के दौरान रूबियो ने भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमरीका का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों, भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा हुई। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
1: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं, वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग

0: योग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी आज मिजोरम म्यांमा सीमा पर स्थित चम्फाई कस्बे के 9 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। ईडी ने बताया कि ये छापेमारी देश में बड़े पैमाने पर अवैध बर्मी सुपारी की तस्करी करने वाले एक संगठित सीमा पार नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए की जा रही है। निदेशालय ने बताया कि इस अवैध नेटवर्क के जरिए करोड़ों रूपये की हेराफेरी की गई है। इसराइल और लेबनान ने संघर्ष विराम को फिर से लागू करने तथा लेबनान के भीतर कुछ विशेष सुरक्षा क्षेत्र बनाने पर सहमति व्यक्त की है, जहां हिजबुल्ला लड़ाकों की मौजूदगी नहीं होगी। अमरीका की मध्यस्थता में हुई चौथे दौर की वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि संघर्ष विराम तभी प्रभावी रहेगा जब हिजबुल्ला पूरी तरह से गोलीबारी बंद करे और लितानी नदी के दक्षिण के क्षेत्रों से अपने सभी लड़ाकों को हटाए। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मड़गांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with Acting President of Venezuela Delcy Rodriguez in New Delhi today. Ms. Rodriguez arrived in New Delhi yesterday on a 5-day visit to India. She is accompanied by a delegation comprising the Ministers of Foreign Affairs, Economy and Finance, Science and Technology, Communication and Information and Transportation. According to the Ministry of External Affairs, India and Venezuela enjoy warm and friendly relations underpinned by cooperation in the energy sector, trade and shared commitment to the Global South. It said the visit is expected to further strengthen bilateral ties and deepen engagement between the two countries across diverse sectors. Union Home Minister Amit Shah will chair the 73rd plenary session of Northeastern Council NEC in Shillong, Meghalaya today. The Ministry of Development of Northeast Region said that the session will discuss and deliberate on progress made by the CM high-level task forces constituted for critical sectors of regional development. During the session, presentations will be made on tourism, agriculture and horticulture, investment promotion, economic corridor development, infrastructure and connectivity, and handloom and handicrafts. In Bihar, 3 people lost their lives and several others sustained injuries after a massive fire broke out at a private hospital located under the jurisdiction of the Brahmapura police station in Muzaffarpur last night. Muzaffarpur District Magistrate Subrat Kumar Sen confirmed the deaths and stated that a number of patients remain in critical condition. They have been shifted to other hospitals for treatment as authorities continue to monitor the situation. According to the hospital administration, the blaze originated in the ICU due to an alleged short circuit. The inaugural edition of the World Yogasan Sports Championship is set to kick off this evening at Transtadia in Ahmedabad, Gujarat, marking a historic milestone on the global sporting roadmap. Prime Minister Modi will virtually join the mega event in the evening to share his best wishes as yoga enthusiasts and athletes from across the globe gather for the competition. We have a report from our correspondent.
3: The 5-day event will witness participation from over 400 participants from 60 countries, including the United States. Organized under the aegis of World Yogasana and hosted by Yogasan Bharat, this milestone event aims to pave the way for the inclusion of yoga in multi-sports event globally, along with spreading awareness about yoga and wellness globally. Competitors will participate in 7 official Yogasan categories, including artistic and rhythmic yoga divisions, where they will be

कुदरत का हरियाली का साथ चाहिए हो तो केरल से बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती। और आज की हमारी डेस्टिनेशन भी केरल में ही है, जिसे आपने चेन्नई एक्सप्रेस और निशब्द जैसी फिल्मों में देखा होगा। ये है केरल के इडुक्की जिले की पहाड़ियों में बसा हुआ हिल स्टेशन मुन्नार। तो आज तस्वीर में मुन्नार की बातें नीतू के साथ, और साथ में होगा सुमधुर संगीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz।

मुसाफिर का तो काम यही है कि एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहे। और आज मुन्नार की बातें हो रही हैं तो मुन्नार के बारे में ही बात करेंगे। मुन्नार जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, मुनु और अरु। मुनु का अर्थ है तीन और अरु का मतलब है नदियां। यहां आपको तीन नदियों का संगम मिलता है, मुथिरा, पुझा, नलथन्नी और कुंडला। ये वो जगह है जो ब्रिटिश काल में दक्षिण भारत में अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। बाद में मुन्नार चाय की खेती के लिए विकसित किया गया, तो यहाँ आपको दूर दूर तक फैले हुए चाय बागान भी देखने को मिलेंगे। चाय के इतिहास, उत्पत्ति और विकास की जानकारी आपको चाहिए हो तो यहाँ एक चाय संग्रहालय भी है, उसे देखिए और जानिए उस चाय के बारे में जिसे आप पीते तो हैं मगर जानते शायद बहुत कम हैं।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्यघर।
4: आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू के साथ तस्वीर सुन रहे हैं आप, और बात हो रही है मुन्नार की। बेहद खूबसूरत जगह है मुन्नार। 1857 में जॉन डेनियल मुनरो नाम का एक ब्रिटिश ट्रावणकोर और मुन्नार के आसपास के राज्यों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने मुन्नार आया था, लेकिन यहाँ की सुंदरता को देखकर वो इतने आकर्षित हो गए कि उनके दिमाग में एक विचार आया। उन्होंने सबसे पहले कॉफी, इलायची जैसी चीजों की खेती की और फिर यहाँ चाय उगानी शुरू की। बाद में A.W. टर्नर ने मुन्नार में बागान लगाना शुरू किया, लेकिन 1880 में एक यूरोपीय बागान मालिक A.H. शार्प ने बाकायदा यहां पर चाय की खेती शुरू कर दी, करीब 50 एकड़ जमीन पर। चाय बागानों का शानदार नजारा आपको देखना हो तो अनरियंगल सबसे बेहतर जगह है। ये बांध चाय के बागानों और सदाबहार जंगलों से घिरा हुआ है, और अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ का सबसे ऊंचा स्थान तो वो है मुन्नार कोडाईकनाल रोड पर टॉप स्टेशन नाम का एक विशाल क्षेत्र। तो जब भी आप जाएं तो हर जगह देख कर आइएगा।

मुन्नार भी ना यही कहता है कि आप कहीं भी चले जाएं आप उसे भूलेंगे नहीं। और मुन्नार के पास है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, जो अपने लुप्तप्राय निवासी नीलगिरी तहर के लिए प्रसिद्ध है। 97 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला ये उद्यान जो है वो दुर्लभ तितलियों, जानवरों और पक्षियों की कई प्रजातियों का भी घर है। हर 12 साल में यहाँ की पहाड़ियाँ जो हैं वो नीले रंग के कालीन से ढक जाती हैं, क्योंकि तब यहाँ खिलते हैं नील कुरुंजी के फूल। नील कुरुंजी पश्चिमी घाट के इस हिस्से का एक स्थानीय पौधा है जो 12 साल में सिर्फ एक बार खिलता है। एराविकुलम पार्क में आप शाम के वक्त धुंध की चादर से घिरे हरे भरे पहाड़ी ढलानों का शानदार नजारा भी

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 तक सिर्फ FM गोल्ड पर।
2: नमस्कार, मैं प्राची सिंह, बटरफ्लाई गर्ल ऑफ इंडिया, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर बधाई देती हूँ। मेरी बहुत ही खास मेमोरी है आकाशवाणी के साथ। जब मैं कॉलेज जाती थी पापा के साथ गाड़ी में, हमेशा आकाशवाणी पे न्यूज बुलेटिन सुनते हुए जाती थी और मैं बहुत ही ध्यान से सुनती थी, क्योंकि मुझे मालूम था न्यूज बुलेटिन खत्म होते ही पापा मुस्कुराते हुए बोलेंगे, अच्छा समराइज करके बताओ। ये जो वहीं से आदत मेरी शुरू हुई थी न्यूज को पढ़ के हर दिन अपडेटेड रहने की, और ये जर्नी मेरी अभी तक चली आ रही है। मैं एक बार फिर से आकाशवाणी को 90 इयर्स कंप्लीट होने पे बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ। आप एक आवाज ही नहीं, एक पहचान है।

तस्वीर सुन रहे हैं आप नीतू के साथ आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर, और हम मुन्नार की बातें कर रहे हैं जहां के वाटरफॉल्स अपनी सुंदरता में अद्वितीय हैं। और एक दो नहीं, कई वाटरफॉल्स हैं यहां पर। लक्कम वाटरफॉल्स, अट्टुकल, न्यायमाक्कड़, कुथुमकल, चियापारा, वलारा और थुवमन, ये सारे वाटरफॉल्स आप यहां देख सकते हैं। चिन्ना कनाल और इसके वाटरफॉल्स बहुत खूबसूरत लगते हैं जब करीब 2000 मीटर की ऊंचाई से एक खड़ी चट्टान से जलधाराएं नीचे गिरती हैं। और उस वक्त ना, बस अगर आप वहां देख रहे हैं ना, तो आपको लगेगा ये कैसा चमत्कार है प्रकृति का कि बस देखते ही रह जाएंगे। सभी वाटरफॉल्स तक पहुंचना आसान भी नहीं है, तो आप पहुंचेंगे ट्रैक करके, यानी प्रकृति प्रेमियों के अलावा ट्रैकिंग के दीवानों के लिए भी मुन्नार जो है वो एक अच्छी जगह है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है अनामुड़ी पीक, यहां भी ट्रैकिंग रूट है, पर ये काफी ऊंचा है, करीब 2700 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा। लेकिन जिनको जाना होता है ना, वो ऊंचाई की परवाह नहीं करते, मुश्किलों की परवाह नहीं करते, बस अंदर से आवाज आती है और आप पहुंच जाते हैं।

मुन्नार ऐसी जगह है कि बस आप दिल हथेली पर लेकर वहां घूमते रहे, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह है कि आपका दिल वापस आने के लिए करेगा ही नहीं। और शॉपिंग का अगर आपको शौक है ना, तो फिर तो आपके लिए स्वर्ग है। चाहे चाय हो या मसाले, आप यहां से अदरक, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, कॉफी, लौंग, जायफल, बहुत सारे मसाले खरीद सकते हैं। और घर पर बनी चॉकलेट्स यहां मिलती हैं, तो आप उन्हें भी ले सकते हैं। सफेद, डार्क, लिकर से भरी हुई और नट्स वाली चॉकलेट्स सब हैं यहां पर। मुन्नार में बहुत सारे रिजॉर्ट्स और होटल्स हैं जो सभी जरूरतों को पूरा करते हैं, और इनमें आपको अपने बजट के हिसाब से किफायती, सस्ते, महंगे हर तरह के रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे। जो आपको सूट करे वो आप ले सकते हैं, यानी कि आपको रहने की प्रॉब्लम नहीं है। मुन्नार को एक्सप्लोर करना वो आपकी जिम्मेदारी है। वो आप कैसे करते हैं वहां जाने के बाद, ये तो जब चाहते हैं ना किसी जगह पर, ये तभी पता चलता है। उससे पहले यहां से हम कितना भी सोच के जाए ना, वहां जाके क्या हालात होते हैं वो तभी पता चलता है। लेकिन हाँ, मुन्नार आपका दिल जरूर जीत लेगा।

0: टैलेंट तो है, पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
2: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
3: मुन्नार की बातें हम सब कर रहे हैं, तस्वीर में नीतू है आपके साथ आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर। मुन्नार तक आप उड़कर जाना चाहते हैं तो निकटतम हवाई अड्डा है कोचीन, यहां से मुन्नार 110 किलोमीटर की दूरी पर है। कोचीन से आप टैक्सी ले सकते हैं या केरल सड़क परिवहन की बसों से सीधे मुन्नार पहुंच सकते हैं। मुन्नार का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन अलुवा है, जो मुन्नार से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां से भी आप बस या टैक्सी ले सकते हैं। मुन्नार जो है वो केरल के सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जहां से आपको सार्वजनिक बसें भी मिल जाएंगी और जहां कुदरत ने इतना प्यार लुटाया हो ना, वहां रास्तों की खूबसूरती देखते हुए ये दूरी कैसे कट जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा।

0: भाई बत्तूर भाई बत्तूर अब जाएंगे कितनी
1: देखिए दूरी चाहे जितनी भी हो अगर आपको जाने का मन है ना किसी जगह तो आप चले ही जाते हैं। हाँ अगर आपको चाहिए कि मौसम कैसा है वहां का वो कब अच्छा होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। मुन्नार घूमने का सबसे अच्छा समय है ठंड का मौसम यानी अक्टूबर से फरवरी। इस दौरान मौसम बेहद सुहावना होता है, आसमान साफ रहता है और जो टेम्परेचर है वो भी अच्छा रहता है। मार्च से मई तक भी हल्का फुल्का मौसम होता है तो आप चाहें तो इस दौरान भी जा सकते हैं, लेकिन जून से सितंबर में होती है भारी बारिश तो इस टाइम पीरियड को आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। हाँ अब देखना आपको है कि आप कब जाना पसंद करते हैं, खिलते हुए फूलों के मौसम में, धुली धुली फिजाओं के दौर में या सर्दी की धूप में, क्योंकि कभी भी जाएं मुन्नार का एक अलग रंग आपको देखने को मिलेगा। अब वो रंग आपको कितना पसंद आता है ये तो आपके ऊपर है। अभी बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ जो कि है दिल तेरा दीवाना फिल्म से।

घायल करना क्यों जरूरी है भाई, अपनी बातों से भी किसी को घायल करने के बारे में मत सोचिए। हम सोच रहे हैं कि बस आपको अच्छे अच्छे गाने सुनवाए जाएं, और इन गानों के साथ आप रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। नीतू अभी आपसे इजाजत चाहती है, आप सुनते रहिएगा आकाशवाणी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। बातचीत में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार तथा निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटो मोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना और सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिश्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। अमरीकी संसद की विदेश मामलों की समिति के समक्ष सुनवाई के दौरान श्री रूबियो ने भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमरीका का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के बीच चर्चा हुई। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि समुद्री सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
1: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं, वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच

Aydın. घर आंगन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। और दोस्तों, आज 4 जून को हम भारतीय सिनेमा की महान अभिनेत्री नूतन जी को उनकी जयंती पर सादर नमन करते हैं। अपनी सादगी, गरिमा और बेमिसाल अभिनय से भारतीय सिनेमा प्रेमियों के दिल में जगह बनाई उनकी फिल्में, उनके किरदार आज भी हमें संवेदनशीलता, आत्मविश्वास और जीवन के सुंदर मूल्यों की याद दिलाते हैं। इसी भावना के साथ महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी का एक प्रेरक विचार, सफलता वही है जो मनुष्य को अधिक विनम्र, अधिक सहृदय और अधिक मानवीय बना दे। तो आइए नूतन जी की यादों और इस खूबसूरत विचार के साथ आज के दिन को खास बनाते हैं। अगले कुछ पलों तक हम साथ रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि अभी सफर शुरू हुआ है।

अभी हम सुन रहे थे मुकेश और लता मंगेशकर को फिल्म थी अनाड़ी। और अब हम बात करेंगे एक ऐसी आवाज की जिसने न केवल खबरें पहुंचाई बल्कि भारत की मिट्टी की खुशबू, लोकगीतों की मिठास और क्षेत्रीय भाषाओं की आत्मा को भी सहेज कर रखा। जी हां, हम बात कर रहे हैं आकाशवाणी के 90 वर्षों की एक ऐसे सफर की जिसने देश की सांस्कृतिक विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का काम किया। भारत विविधताओं का देश है, यहाँ हर कुछ किलोमीटर पर बोली बदल जाती है, गीतों के सुर बदल जाते हैं और लोक परंपराओं का रंग नया हो जाता है। तो आकाशवाणी ने न एक प्रसारण संस्था की भूमिका निभाई बल्कि एक सांस्कृतिक संरक्षक बनकर भी सामने आई। अनेक लोक कलाकार जिनकी पहचान कभी अपने गांव या जिले तक सीमित थी, उनकी प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच मिला। सिर्फ संगीत ही नहीं, आकाशवाणी ने क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों को भी जीवंत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदी, उर्दू, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम, कन्नड़, असमिया और न जाने कितनी भाषाओं में प्रसारित कार्यक्रमों ने लोगों को अपनी जड़ों से जोड़े रखा। आज डिजिटल युग में भी आकाशवाणी की यह विरासत उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि तकनीक बदल सकती है लेकिन अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान से जुड़ाव कभी पुराना नहीं होता। आकाशवाणी के 90 वर्षों का ये सफर हमें याद दिलाता है कि संस्कृति सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि उन आवाजों में बसती है जो पीढ़ियों तक सुनाई देती रहती है। मिट्टी की महक, सुरों का संसार, भाषाओं में बसता है अपना प्यार, जो जड़ों से जोड़े वही सच्ची

0: अभी हम सुन रहे थे हेमलता और जसपाल सिंह को, फिल्म थी नदिया के पार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: और दोस्तों, अब हम चलेंगे भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर की ओर, जहां मौजूद है एक ऐसी झील जो मानो प्रकृति का जादू हो। जी हाँ, बात हो रही है लोकटक लेक की, जिसे भारत की तैरती झील भी कहा जाता है। कल्पना कीजिए एक झील जिसके ऊपर जमीन तैर रही हो, जहां घर भी तैरते हो, मछुआरे भी तैरते द्वीपों पर रहते हो, और यहां तक कि एक राष्ट्रीय उद्यान भी पानी पर तैरता हो। लोकटक झील की सबसे अनोखी पहचान है फुमदी, यानी तैरते हुए द्वीप। ये मिट्टी, वनस्पतियों और जैविक पदार्थों से बने प्राकृतिक तैरते हुए भूखंड हैं, जो पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। कुछ तो इतने मजबूत होते हैं कि उन पर घर तक बने हुए हैं। और यही नहीं, लोकटक झील में स्थित है किबुल लमजाओ नेशनल पार्क, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। यही दुर्लभ और सुंदर संगाई हिरण की का जो है अंतिम प्राकृतिक घर है, जिसे डांसिंग डियर यानी नृत्य करने वाला हिरण भी कहा जाता है। मणिपुर सिर्फ अपनी तैरती झील के लिए ही नहीं जाना जाता है दोस्तों, यह राज्य अपने समृद्ध संस्कृति, रंग बिरंगे त्योहार, पारंपरिक नृत्य और खूबसूरत हस्तशिल्प के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ की मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य भारत के जो प्रमुख क्लासिकल डांसेस में गिना जाता है, इसकी कोमल मुद्राएं और आध्यात्मिक भाव दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करते हैं। मणिपुर को भारत का आभूषण भी कहा जाता है। हरी भरी पहाड़ियां, शांत घाटियां, झरने और लोकटक झील का अद्भुत दृश्य प्रकृति प्रेमियों का स्वर्ग बना देता है। और खेलों की बात करें तो मणिपुर ने भारत को कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं। लोकटक झील हमें सिखाती है कि प्रकृति के पास ऐसे चमत्कार हैं जिन्हें देखकर विज्ञान भी हैरान रह जाता है। और मणिपुर हमें याद दिलाता है कि भारत की असली खूबसूरती उसकी विविधता में बसती है।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म थी बरसात की एक रात। और अगर आप भारतीय लोक कला की दुनिया में सच में कुछ असाधारण ढूंढ रहे हैं तो भूरी बाई का नाम आपको ठहर कर सुनना पड़ेगा। यह कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने मिट्टी की दीवारों पर बने चित्रों को दुनिया के बड़े कैनवस तक पहुंचा दिया। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकली भूरी बाई, उनके लिए कला कोई शौक नहीं था, ये तो जीवन का हिस्सा था। पिथौरा चित्रकला, जो आमतौर पर घर की दीवारों पर धार्मिक और सांस्कृतिक अवसर

दीवारों पर बनाई जाती है, वही उनकी पहली पहचान बनी। पिथौरा कला सिर्फ सजावट नहीं होती है, इसे शुभ अवसरों पर, मनोकामना पूरी होने पर या किसी विशेष धार्मिक अनुष्ठान के समय घर की दीवारों पर बनाया जाता है। इस कला में रंग बिरंगे घोड़े, सूरज, चांद, पेड़ पौधे, पक्षी और प्रकृति के अनेक प्रतीक दिखाई देते हैं। हर आकृति का अपना अर्थ होता है, हर चित्र अपने भीतर एक लोक कथा, एक विश्वास और एक पूरी जीवन शैली को समेटे हुए होता है। लेकिन दोस्तों जरा सोचिए, सिर्फ परंपरा दीवारों तक सीमित थी, वहां एक महिला ने उस कला को कागज और कैनवस पर उतारने की हिम्मत दिखाई। 1980 के दशक में जब वे भोपाल आईं और भारत भवन से जुड़ी, तब उनकी कला ने एक नया मोड़ लिया। पहली बार पिथौरा की रेखाएं, रंग और कहानियां दीवारों से निकलकर एक नए संसार में कदम रख रही थी। भूरीबाई ने यह साबित किया कि परंपरा को तोड़ा नहीं जाता है, उसे नए रूप में जिया जाता है। आज उनकी कला देश विदेश के प्रदर्शनियों में सराही जाती है और उनके इस अद्भुत योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। यह सिर्फ एक कलाकार की कहानी नहीं है दोस्तों, यह हिम्मत की कहानी है, यह उस आवाज की कहानी है जो कहती है कि अगर आपके हाथों में कला है तो दुनिया कैनवस बन सकती है। भूरीबाई एक नाम नहीं, एक प्रेरणा है।

अभी हम सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म आराधना से। और दोस्तों, गर्मी अपने पूरे शबाब पर है। सूरज की तपिश, उमस भरी हवाएं और पसीने से भरे दिन, ऐसे मौसम में सिर्फ स्टाइलिश दिखना ही काफी नहीं बल्कि आरामदायक महसूस करना भी उतना ही जरूरी है। तो आइए आज बात करते हैं भारत के उन खूबसूरत फैब्रिक्स और वस्त्रों की जो इस गर्मी में आपको देंगे सुकून भी और खूबसूरती भी। तो सबसे पहले बात करते हैं सूती कपड़ों की। हमारा जो देसी सूती साड़ियां, कुर्तियां, सलवार सूट गर्मियों के सबसे भरोसेमंद साथी हैं। सॉफ्ट होता है, पसीना सोखने की क्षमता और हवा के आसान बहाव की वजह से सूती कपड़े त्वचा को दिन भर राहत देते हैं। इसके बाद आता है खादी। महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन की पहचान रही खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि एक विचार है। हाथों से बुना हुआ ये जो कपड़ा होता है गर्मियों में ठंडक देता है, ब्रीदेबल है और एक सादगी भरा गरिमामय व्यक्तित्व भी देता है। भारतीय साड़ियों की दुनिया में चंदेरी, माहेश्वरी, जामदनी, अजरक, कोटा डोरिया और मलमल जैसी बुनावटें गर्मियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हल्की होती है, ब्रीदेबल होता है, बहुत ही खूबसूरत ये परंपरा जो फैब्रिक का है, आराम का अनोखा संगम है। और अब बात उन खास भारतीय सिल्क्स की, रेशम की, जो अपनी शाही खूबसूरती के साथ साथ आरामदायक भी हैं। एरी सिल्क, जिसको करुणा सिल्क भी कहा जाता है, इसकी बनावट मुलायम होती है और यह जो रेशमी कपड़ों की तुलना में अधिक ब्रीदेबल है, यानी आसानी से आपके बॉडी में हवा के जो आर पार है वो इजीली होगा, इसलिए गर्म मौसम में भी सहज महसूस होता है। मुगा सिल्क, असम की अनमोल धरोहर, अपनी प्राकृतिक सुनहरी चमक के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह हल्का होता है, टिकाऊ और बहुत ही शालीन दिखता है। और अगर कहा जाए कि हल्के रंग और प्राकृतिक वस्त्र न केवल शरीर को ठंडक देते हैं बल्कि देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो याद रखिए, गर्मियों में फैशन का मतलब भारी भरकम कपड़े नहीं बल्कि ऐसे वस्त्र हैं जो शरीर को राहत दे, मन को सुकून दे और भारतीय शिल्प की खूबसूरती को भी साथ लेकर चले। तो इस मौसम में अपनी अलमारी को देसी रंगों से सजाइए और हर दिन को बनाइए आराम, सादगी और सौंदर्य से भरपूर।

अभी हम सुन रहे थे शमशाद बेगम और आशा भोसले को फिल्म नया दौर से। और दोस्तों, कहते हैं प्यार वो एहसास है जो आपको आजादी देता है और नियंत्रण वो आदत है जो आपकी आजादी छीन लेती है। लेकिन कई बार दोनों के बीच की रेखा इतनी धुंधली हो जाती है कि लोग नियंत्रण को ही प्यार समझ बैठते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई बार बार आपसे पूछे कि आप कहाँ हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या पहन रहे हैं और हर बात का हिसाब मांगे, तो क्या यह प्यार है? नहीं, प्यार विश्वास पर टिका होता है, शक पर नहीं। प्यार कहता है मुझे तुम पर भरोसा है, नियंत्रण कहता है मुझे हर चीज मेरे हिसाब से चाहिए। प्यार आपको बढ़ने देता है, आपके सपनों को पंख देता है, जबकि नियंत्रण धीरे धीरे आपकी पहचान, आपकी पसंद और आपकी स्वतंत्रता को सीमित करने लगता है। कई बार लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ इसलिए रोकता हूँ, लेकिन फिक्र और पाबंदी में भी फर्क होता है। फिक्र आपका हाथ थामती है, पाबंदी आपके कदम रोकती है। याद रखिए, किसी से प्यार करना, किसी पर अधिकार जमाना, दोनों अलग बातें हैं। एक स्वस्थ रिश्ते में संवाद होता है, सम्मान होता है और सबसे जरूरी, एक दूसरे के व्यक्तित्व को स्वीकार करने की जगह होती है। अगर किसी रिश्ते में आपको हर समय खुद को साबित करना पड़ रहा है, अपनी पसंद बदलनी पड़ रही है या डर के मारे फैसले बदलने पड़ रहे हैं, तो शायद समय आ गया है यह सोचने का कि यह प्यार है या नियंत्रण। क्योंकि सच्चा प्यार आपको छोटा नहीं करता, वो आपको बेहतर इंसान बनने का साहस देता है। प्यार वो नहीं जो पिंजरा बन जाए, प्यार वो है जो खुला आसमान दे जाए। और इसी सोच के साथ दीजिए रिश्तों को सम्मान, भरोसा और थोड़ी सी खुली हवा। और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो हमें ईमेल भेजिए। हमारा ईमेल आईडी fmgoldg@gmail.com। हमें आपके संदेश का इंतजार रहेगा।

अभी हम सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म गैम्बलर से। और दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हम उदास होते हैं, तनाव में होते हैं या बहुत खुश होते हैं, तब हमारा हाथ सीधे किसी मिठाई, चिप्स या पसंदीदा स्नैक की तरफ बढ़ जाता है। और हाँ, हो सकता है आपको भूख नहीं हो, लेकिन इमोशनल ईटिंग यानी भावनात्मक कारणों से खाने की आदत हो। दरअसल हमारा शरीर और मन दोनों अलग अलग तरह की भूख महसूस करते हैं। शरीर की भूख धीरे धीरे बढ़ती है और पेट भरने पर खत्म हो जाती है, लेकिन भावनात्मक भूख अचानक आती है और अक्सर हमें जरूरत से ज्यादा खाने पर मजबूर कर देती है। और सच यह है कि कुछ खाने की चीजें हमारी भावनाओं से भी जुड़ी हैं। घर के गरम गरम पराठे जिन पर ढेर सारा मक्खन, सुबह की चाय जिसमें चीनी कुछ ज्यादा ही, और फिर दाल मखनी और पनीर बटर मसाला जैसे व्यंजन जिनका स्वाद तो लाजवाब होता है, लेकिन इनके साथ आने वाली कैलोरीज भी कम नहीं होती है। इन स्वादों से जुड़ी यादें और भावनाएं हमें बार बार उनकी ओर खींचती हैं, लेकिन स्वाद और सेहत के बीच संतुलन बनाना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए ऐसा भोजन चुनिए जो सिर्फ मन को ही नहीं, शरीर को भी अच्छा लगे। ज्यादा तेल, मक्खन, चीनी वाले भोजन को रोजमर्रा की आदत बनाने के बजाय कभी कभार के आनंद तक सीमित रखिए। अगर तनाव महसूस हो रहा है तो खाने के बजाय थोड़ी देर टहल लीजिए, संगीत सुनिए, गहरी सांस लीजिए या फिर किसी अपने से बात कीजिए। कई बार दिल को सुकून चाहिए होता है, पेट को नहीं। तो आज से उस खाने को अलविदा कहिए जो धीरे धीरे आपको अस्वस्थ बना दे, और अपनाइए ऐसा भोजन जो आपको ऊर्जा, ताजगी और बेहतर स्वास्थ्य दे।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म दिल एक मंदिर से। और दोस्तों, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा और हमारा कार्यक्रम आगे भी कैसा लगता है हमें जरूर बताएं। आपके सुझाव, शिकवा, शिकायत, तारीफ सबका स्वागत है। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। तो अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन जाने से पहले एक और खूबसूरत सा गीत।

अभी हम सुन रहे हैं किशोर कुमार और उषा मंगेशकर को फिल्म नसीब। और इसी के साथ हमारी आज की प्रस्तुति यहीं तक। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। दीजिए मंजुला को इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। इस बातचीत में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार तथा निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल्स क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना और सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिश्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री सुकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक की जानकारी दी है।
1: ये हमारा 23rd प्लेनरी मीटिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट होने जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों तक निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराएगी। सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रतिदिन 2 शिफ्टों में आयोजित की जानी है। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस आयोजन को योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। शेयर बाजार दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज

की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 35 अंक गिरकर 74,311 पर, जबकि निफ्टी 5 अंक फिसलकर 23,401 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आज जयंती है भारतीय सिनेमा के इतिहास की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक नूतन समर्थ बहल की, जिन्हें सिने प्रेमियों के बीच नूतन के नाम से जाना जाता है, जिनका जन्म 4 जून 1936 को मुंबई में हुआ था। दोपहर के 1:11:14 हुए हैं। 100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM गोल्ड और आपके साथ आज के कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल में मैं हूं नईम अख्तर। नूतन के बारे में बात करेंगे हम आज के इस कार्यक्रम में। नूतन जो उन सुलझी हुई महिला किरदारों में अपनी स्वाभाविक अदाकारी के लिए जानी जाती थी, जिन्हें अपरंपरागत माना जाता था। 4 दशक लंबे अपने करियर में उन्होंने 80 से ज्यादा फिल्मों में मुख्तलिफ किरदार निभाए। उन्हें 7 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले, जिनमें रिकॉर्ड 5 पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए शामिल हैं। जी हाँ, ये एक रिकॉर्ड है जिसको कोई नहीं तोड़ पाया, लेकिन जिसकी बराबरी उनकी भांजी काजोल ने जरूर की है। 1974 में नूतन को भारत का 4th सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री मिला और भी बहुत सारे पुरस्कार मिले। उनके फिल्मी जीवन के साथ साथ उनके निजी जीवन के बारे में भी बात करेंगे आज के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है कलाकार बेमिसाल। बात चलेगी आज नूतन की, उन्हीं की फिल्मों के कुछ गीत आप तक पहुंचाएंगे हम।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बात कर रहे हैं आज के कलाकार बेमिसाल कार्यक्रम में नूतन की। मुंबई में फिल्म मेकर कुमार सेन समर्थ और अभिनेत्री शोभना समर्थ के घर जन्मी थी नूतन। पहली बार 1945 में अपने पिता की फिल्म नल दमयंती में एक बच्ची के रूप में कैमरा के सामने कुछ देर के लिए नजर आई थी। उसके बाद 14 साल की उम्र में 1950 की फिल्म हमारी बेटी से नायिका के तौर पर बाकायदा शुरुआत की थी, जिसका निर्देशन उनकी माँ ने किया था। उसके बाद उन्होंने 1951 की दो फिल्मों नगीना और हम लोग, इन दोनों में काम किया। दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी सी बात हम करेंगे इसी कार्यक्रम में थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी इसी दशक यानी कि 50 के दशक के आखिर में 1957 में एक फिल्म रिलीज हुई थी पेइंग गेस्ट, जिसने बहुत कामयाबी हासिल की थी। उसी फिल्म का एक

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 1:24:44 कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल नूतन की बात हम कर रहे हैं और नूतन के बारे में हमने आपको बताया कि वो कहाँ पैदा हुई, कैसे उन्होंने फिल्मों में कदम रखा और किस तरीके से उन्होंने एक के बाद एक फिल्मों में काम किया। लेकिन जो फिल्में हमने आपको बताई उन फिल्मों में मैंने आपको नाम बताया, फिल्म नल दमयंती का, नगीना का और इसके अलावा फिल्म हम लोग का। लेकिन जो फिल्म जिससे उनकी रोल को जबरदस्त पहचान मिली, जिससे उनको खुद को जबरदस्त पहचान मिली, वो फिल्म थी 1955 की सीमा। सीमा फिल्म वो फिल्म थी जिस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। उसके बाद 1959 में सुजाता फिल्म के लिए, 1963 में बंदीने के लिए, 1967 में मिलन के लिए और 1978 में मैं तुलसी तेरे आंगन की इस फिल्म के, इन फिल्मों में अपने रोल्स के लिए 4 और बार भी उन्हें ये अवार्ड मिला। 80 के दशक में नूतन ने कैरेक्टर रोल्स यानी चरित्र भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी थी और 1985 की फिल्म मेरी जंग जो थी वो उनके अभिनय, उस फिल्म में उनके अभिनय के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस यानी सर्वश्रेष्ठ सहनायिका के श्रेणी में 6ठा और आखिरी फिल्म फेयर अवार्ड मिला। और यही वो फिल्म, यही वो रिकॉर्ड है जिसके बारे में हमने आपको पहले भी कहा था कि जिसको कोई नहीं तोड़ सका। वो एक अकेली ऐसी रही जिसने 5 बार 6 बार इस पुरस्कार को जीते हैं। उनकी भांजी काजोल ने बाद में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार सबसे अधिक बार जीतने के उनके रिकॉर्ड की बराबरी जरूर की, लेकिन उससे आगे अभी तक और कोई भी नहीं निकल पाया। तो जब फिल्म फेयर पुरस्कारों की हम बात कर रहे हैं और बात की है हमने फिल्म सीमा से शुरुआत करके, क्योंकि सीमा ही वो पहली फिल्म थी जिस फिल्म से उनको ये पुरस्कार मिलने शुरू हुए थे। वो फिल्म आई थी 1955 में और बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था उनका इस फिल्म में, सब जानते हैं जिन्होंने फिल्म देखी है वो गवाह हैं इस बात के, जिन्होंने नहीं देखी है उनको जब कभी भी ये फिल्म देखने का मौका मिलेगा वो यकीनन हमारी इस बात से अग्री करेंगे कि इस फिल्म में जो कैरेक्टर उन्होंने निभाया था वो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स तरीके का, इतना मुश्किल किरदार था जिन्होंने, जिसको उन्होंने पर्दे पर इस तरह से साकार किया कि आज भी उनको इस कैरेक्टर के लिए याद किया जाता है। फिल्म में एक गीत था सीमा फिल्म में, मनमोहना बड़े झूठे। गीत गाया तो है लता मंगेशकर ने, लेकिन इस फिल्म में बार बार नूतन ने खुद अपनी आवाज में इस गीत को कई बार दोहराया है, मनमोहना बड़े झूठे, मनमोहना बड़े झूठे। और यही वो गीत है जिससे पता चलता है कि नूतन के अंदर गायकी का भी कितना जबरदस्त पुट था। तो चलिए पहले ही गीत सुनते हैं, बाद में उनकी गायकी के बारे में और बात करेंगे।

आकाशवाणी एफ एम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 1:32:59 लीजिए 1:33 हुए हैं और ये कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल, जिसमें आपके साथ आज मैं हूं नईम अख्तर और बात कर रहे हैं हम आज फिल्म अभिनेत्री नूतन की। नूतन के बारे में जितनी बात हमने की, उनकी जिन फिल्मों का जिक्र किया, उनमें से दो फिल्मों की कुछ खास बात आपके साथ शेयर करना जरूरी समझ रहे हैं यहाँ, क्योंकि आप अगर एफ एम गोल्ड के साथ जुड़े हैं तो आपके पास मजेदार जानकारियां भी पहुंचना जरूरी है। एक फिल्म थी 1951 की नगीना, रविंद्र दवे की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म, उनकी व्यावसायिक रूप से पहली सफल फिल्म थी। लेकिन मजेदार बात यह है कि उन्हें इस फिल्म के प्रीमियर में शामिल होने की इजाजत नहीं मिली थी। क्यों? क्योंकि फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला था। ए सर्टिफिकेट या मतलब अडल्ट्स के लिए, वयस्कों के लिए सिर्फ ये फिल्म थी, और खुद नूतन उस फिल्म में नायिका होने के बावजूद नाबालिग थी, यानी सिर्फ 15 वर्ष की थी, इसलिए उन्हें इस फिल्म के प्रीमियर में शामिल होने की इजाजत नहीं मिली थी। ये तो ही फिल्म नगीना के बाद एक और फिल्म थी 1963 की बंदिनी। मतलब अगर नूतन का नाम आता है, नूतन के नाम के साथ जो फिल्में शीर्ष पर आती हैं, उनमें से बंदिनी फिल्म का जिक्र करना लाजमी हो जाता है। इस फिल्म की भी एक खास बात यह है कि तब तक जब ये फिल्म बंदिनी बननी शुरू हुई, उससे पहले नूतन शादी कर चुकी थी, शादी के बाद अभिनय छोड़ चुकी थी। अब ये फिल्म जब बिमल रॉय ने बनाने के लिए सोचा तो इस भूमिका को निभाने के लिए उनके जहन में सिर्फ नूतन का नाम आया, लेकिन उनको ये बात भी पता

थी कि नूतन फिल्में छोड़ चुकी हैं और अब अपनी शादीशुदा जिंदगी के मजे ले रही हैं। लेकिन बिमल रॉय को अपनी फिल्म में सिर्फ नूतन चाहिए थी, तो उन्होंने नूतन से बात की और बमुश्किल उनको राजी कर ही लिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अगर नूतन ने इस फिल्म में काम करने के लिए मना कर दिया तो वो ये प्रोजेक्ट ही छोड़ देंगे। तो देखा, ये थी नूतन की अदाकारी की चरम शीर्ष कह लीजिए या उनकी उनकी बेमिसाल अदाकारी का एक जलवा कह लीजिए कि नूतन नहीं तो बिमल रॉय जैसे फिल्मकार कह रहे हैं कि वो फिल्म ही नहीं बनाएंगे। चलिए बंदिनी फिल्म का ही एक गीत सुनते हैं। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था।

खूबसूरती और प्रतिभा की अनूठी मिसाल थी नूतन। अदाकारी का लोहा तो उन्होंने मनवाया ही, और भी कुछ ऐसे गुण थे जिनके बारे में आपसे बात करना जरूरी है। 1952 के फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में भी हिस्सा लेकर मिस मसूरी का खिताब अपने नाम किया नूतन ने। टेलीविजन में भी अपना हाथ आजमाया, लेकिन आपको ये बता दें कि टीवी सीरियल मुजरिम हाजिर में कालीगंज की बहू के रूप में जो उन्होंने शानदार अभिनय किया था, उसके बारे में ये बात भी आपके साथ शेयर करना लाजमी है कि छोटे पर्दे पर ये उनकी एकमात्र भूमिका थी। एक और गुण उनका यह था कि उनकी आवाज बेहद मीठी होने के साथ साथ सुरीली भी थी। उन्होंने 4 साल तक शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त की। फिल्म हमारी बेटी के लिए स्नेहल भाटकर के संगीत निर्देशन में तुझे कैसा दूल्हा भाई रे गाना गाया। बाद में उन्होंने और भी कई गीत गाए, जिनमें एक फिल्म पेइंग गेस्ट में तो आपने उनको देखा ही होगा शुभा खोटे के साथ, जो वो शायरी कर रही है वो भी उन्होंने गायकी की आवाज में करी। और एक फिल्म आई थी छबीली, इस फिल्म में इन्होंने कई गीत गाए थे, 4 गीत शायद गाए थे, उनमें से एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

नूतन के निजी जीवन की बात करें तो उनकी नानी रतनबाई, मौसी नलिनी, जयवंत, बहन तनुजा, भांजियां काजोल और तनीषा भी अभिनेत्रियां हैं। नूतन की शादी नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से 1959 में हुई थी। उनके इकलौते बेटे का नाम मोहनीश बहल है और वो भी एक अभिनेता है। मोहनीश की शादी अभिनेत्री एकता से हुई है और उनकी पोती यानी नूतन की पोती प्रनूतन बहल भी एक अभिनेत्री है। उनकी जिंदगी के आखिरी सफर के बारे में भी बात करके कार्यक्रम का समापन करते हैं। 1990 में नूतन को ब्रेस्ट कैंसर का पता चला और उनका इलाज कराया गया। फरवरी 1991 में उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया और वहां पता चला कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। जिन दिनों उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था उन दिनों वो दो फिल्मों की शूटिंग कर रही थी, गर्जना और इंसानियत। उनके जीवित रहते ही उनके जो आखिरी फिल्म रिलीज हुई थी वो थी 1989 की कानून अपना अपना, और उनके निधन के बाद दो फिल्में और रिलीज हुई 1992 में नसीब वाला और 1994 में इंसानियत। बस जिंदगी इतनी ही है, हर कदम एक नई जंग है। यही उनकी आखिरी वो वाली फिल्म थी जिसके लिए उनको फिल्म फेयर का अवार्ड मिला था। नईम को भी दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल।

नमस्कार श्रोताओं, आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का दबंग केंद्र है और आप हमें सुन रहे हैं मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आज सन 2026 जून महीने की 4 तारीख व दिन है गुरुवार। श्रोताओं, अब आरंभ होता है हमारा आज का प्रसारण। अब से लेकर रात्रि 9:16 तक प्रसारित किए जाने वाले तमाम कार्यक्रमों को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम कक्ष में उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायक श्री तेंजिन दोर्जी, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित रहेंगे अभियंत्र के सहायक श्री तानिंग तक्को, ट्रांसमीटर में उपस्थित रहेंगे अभियंत्र के सहायक श्री अंतु कुमार दास और सुश्री शिका देखा, मोनपा में उद्घोषक श्री सांगी ताशी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका किसांग लामू और आप सभी का हमारे आज के इस प्रसारण में हार्दिक स्वागत करती हूं।

आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का दबंग केंद्र है और आप हमसे जुड़े हुए हैं मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिडडे न्यूज तथा दोपहर समाचार 2:15 पर। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना तथा सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद एनईसी का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलांग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय कार्यबलों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा प्रमुखता से शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्रीकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है और 2014 के

0: तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
1: उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है। ये क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस GBRC के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने हाल ही में कई देशों के साथ सम्पन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों की सराहना भी की। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित GBRC का उद्देश्य वैश्विक व्यापार से जुड़े विषयों और चुनौतियों पर शोध के लिए चर्चा का अवसर प्रदान करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 वर्षों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। यह अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया था। गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक घुसपैठिए का पता लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को आश्रय, रोजगार या सहायता प्रदान करके कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2: 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है, इनमें से 362 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं। साथ ही जिन लोगों ने उनको रहने के लिए घर दिया होगा और जिन्होंने उनको नौकरी दी है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे होंगे, उन पे भी एक कड़े कदम उठाने के लिए एक पूरी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी।
1: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
3: ICU 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है शॉर्ट सर्किट से। कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है, बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। तो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी सूची कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जांच कर रहे हैं।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रूपये और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घायलों के चिकित्सा खर्च की व्यवस्था की जाएगी। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। जनवरी 2015 में निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को

0: फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमरीकी संसद की मंजूरी मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरलम में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में तेज बारिश हो रही है।
1: केरलम के 6 जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। केरलम में कई जगहों पर रात से अब तक लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरलम से स्मिथ एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की प्रबल संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं को योग में शामिल करना है।
2: वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोम विहाने से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 149 अंक गिरकर 74,197 पर, जबकि निफ्टी 34 अंक फिसलकर 23,372 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून शुरू और अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अभी आप सुन रहे थे।

दोपहर समाचार आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का दबांग केंद्र है और आप हमसे जुड़े हुए हैं मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति गीतों का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। आज इसके अंतर्गत आप सुनेंगे अनूप जलोटा जी द्वारा गाये चंद हिंदी भजन। श्रोताओं तो लीजिए पेश है कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना के अंतर्गत अनूप जलोटा द्वारा गाए चंद हिंदी भजन। श्रोताओं, तो इसी के साथ ही भक्ति गीतों का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर समाप्त होता है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम से पहले आइए सुनते हैं RBI द्वारा जारी यह संदेश।

0: वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड है और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर।
1: सीनियर सबसे पहले, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, ये आकाशवाणी का दबांग केंद्र है और आप हमसे जुड़े हुए हैं मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त दोपहर के 3:01 हुए हैं। अब प्रस्तुत है विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। आज इसके अंतर्गत आप आनंद लेंगे चंद दिगारू मिश्मी आधुनिक गीतों का नेपालू पू की आवाज में। श्रोताओं, तो लीजिए पेश है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत चंद दिगारों में आधुनिक गीतों का नेफालू बू के वास में। श्रोताओं, तो इसी के साथ ही विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये

0: आकाशवाणी का तबांग केंद्र है और आप हमसे जुड़े हुए हैं मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त दोपहर के 3:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है महिलाओं पर आधारित कार्यक्रम महिला मंच। आज इसके अंतर्गत आप सुनेंगे वोंग अमा सेल्फ हेल्प ग्रुप के अध्यक्ष श्रीमती नोरबू ड्रेमा एवं कोष अध्यक्ष श्रीमती तंजिन हामो से वोंग अमा सेल्फ हेल्प ग्रुप के पिछले 5 वर्षों में गादे नमगिल हादसे पीएलएफ के अंतर्गत उनकी उपलब्धियों पर एक बातचीत। इनके साथ भेंट करता है दुर्जी ड्रेमा। श्रोताओं, तो लीजिए पेश है कार्यक्रम महिला मंच।
1: आकाशवाणी तवांग से प्रसारित महिला मंच कार्यक्रम सुन रहे आप सभी श्रोताओं का मैं स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज हमारे साथ हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में जो अतिथि उपस्थित है हमारे लिए बहुत ही विशेष है, क्योंकि इन्होंने हमारे आकाशवाणी के कार्यक्रमों में आज से पहले भी कई बार हिस्सा ले चुके हैं, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से संबंधित हो या फिर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संबंधित हो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ तवांग क्षेत्र के सेल्फ हेल्प ग्रुप होंग अमा के प्रेसिडेंट श्रीमती नोरबू ड्रेमा जी के बारे में। तो नोरबू ड्रेमा जी, एक बार फिर आपका हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में मैं हार्दिक स्वागत करना चाहूंगी।
2: धन्यवाद
1: जी। तो श्रोताओं, जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमने पहले भी नोरबू ड्रेमा जी के साथ इनके जो होंग अमा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है तवांग क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध है, इस बारे में आपके समक्ष चर्चा किए थे, पर तब की बात थोड़ी सी अलग थी। अब जो है इनके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इनमें बहुत सारे बदलाव इन्होंने लाए हैं, तो आज हम उसी से संबंधित इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तो थोड़ी सी पीछे हम और एक बार चलते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जो होंग अमा सेल्फ हेल्प ग्रुप है इसकी स्थापना कब हुई थी, इस बारे में जानेंगे, और साथ साथ इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में फिलहाल आपके साथ कितने सदस्य जुड़े हुए हैं।
2: जी, होंग अमा जो है हम लोग 8 मेंबर है इसमें, और ये 17 नवम्बर 2020 में इसका स्थापना हुआ था, और 8 अमा तब भी था, 8 अमा आज भी है
1: जी,
2: और बहुत अच्छे से चल रहा है हमारा ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है।
1: जी, तो लगभग 5 साल होने जा रहे हैं, है ना? तो इन 5 सालों में आपके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वोंग अमा, जो कि मैंने पहले कहा बहुत ही प्रसिद्ध है, तो अब तक के आपकी जो उपलब्धियां हैं इस बारे में जानेंगे, और साथ साथ इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में इन 5 सालों में आपने किस तरह के काम किए हैं।
2: सेल्फ हेल्प ग्रुप जब ये इसका स्थापना हुआ था तब हमें बताया गया कि इसमें आपको 3 महीने तक काम करके दिखाना होगा, तभी आपको इसमें सिलेक्शन होगा, ऐसे बताया था। तो ये हम 8 अमा जब इसमें शामिल हुए तो हम लोगों ने पहले 3 महीने तो हम लोगों ने डट के काम किया, जिसमें जंगल में धूप को काटने से लेके उसको सुखाने से लेके उसको पैकेजिंग करने से लेके बिक्री करने तक के लेके बोमडिला तक जाने का जर्नी जो है काफी मेहनत भरी थी, और जंगल में जाके चाय पत्ती जो नमक चाय में बहुत स्वादिष्ट है उसको भी हम लोग ने जंगल से कलेक्ट किया, धोया, पैकेजिंग किया, उसको भी बिक्री किया। इसके अलावा हम लोग खपसे को बहुत, मेरा सपना ही था कि जैसे हम लोगों का बीकानेरी भुजिया प्रसिद्ध है, ऐसे ही मोम्पा का जो रेसिपी खपसे है वो भी सबके घर पहुंचे, ऐसा सोच के मैंने इसी को आगे बढ़ाने के लिए खपसे को शुरुआत किया। तो शुरुआत में तो तकलीफ तो काफी थी, क्योंकि हम लोगों का बजट जो है, हम लोग हफ्ते में लगभग 30 रुपए ही हम लोग जमा करते हैं। अच्छा। हफ्ते में तो 4 हफ्ता में 120 जमा होता है, 8 अमा के हर अमा जो है 120 रुपए उसमें कंपलसरी सेविंग के रूप में हम लोग जमा करते हैं। तो